0: Leave early then. Oke, Uzi Aminu, diam bonati bonati bos. Uzi kakak Riti dia bilang satu lagu dong buat orang-orang suka penipu bosku. Ya, baik nanti saya putar yang orang-orang yang suka penipu. Oh, penipu, oh penipu, penipu. Bilang sama mereka, wih jangan begini. Mudahkan sifat kamu. Hei, mudah Fali ya, saya dan berubah sifat kamu. And fear my hair next week see to team to June. Tur mai tarona musica rualai kare ke. Jangan begini begini. Kalau bisa ubah sifatnya, ubah atau apa itu oh muda atau ubah. Bahasa saya itu gado-gado, ulung aing, atas sampai bawah, bawah sampai atas sih. Susah. Kalau Inggris itu susah. Kalau mengerti itu yang kakak yang baju merah yang dia yang mengerti. Juga kakak-kakaknya yang mengerti understand. Kalau me I don't but I speak English ladung barak. Ladel nadong det. Aku kuliah English nadong det. English makanya sana. Ya, tur mai tarona musika rola ya. Au goli ingles nadong det. But I'm speak English it nadong det. Not more. Dia ko vinti siro tu mai tu to kompanya tan musika ruba. Musika thank you for coming and then one music. The power of love. Mai tu kampanye. Apa ini musik ramat? Teletan mensaje.
1: Fairy tales में हर राजकुमारी की वही एक कहानी होती है. राजकुमारी किसी मेंढक को चुनती है. वो राजकुमार बन जाता है और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं happily ever after. मुझे भी ऐसा ही लगता था बहनों.
2: कभी भी नहीं हुआ.
3: नानी मैं पागल तो नहीं हो रही.
4: गलती तेरी नहीं है. जींस में अमर.
5: देख अगर तू इस साल शादी करेगी तो शायद 2 साल में प्रेग्नेंट हो जाएगी.
6: कहा है मेरा वीर प्रताप सिंह.
7: तुमको राज मल्होत्रा भी चाहिए लेकिन रिलेशनशिप में मीनिंग भी.
8: हैप्पी टू यू बेब. आफ्टर ऑल कब तक घर पे अकेले बैठ के फोन देख.
6: कहा है मेरा वीर प्रताप सिंह.
7: तुमको राज मल्होत्रा भी चाहिए लेकिन रिलेशनशिप में मीनिंग भी ढूंढना.
9: 40 में भी कर सकती है. अंडे फ्रीज करा ले.
10: फ्रिज से निकले बच्चे पैदा करेगी.
11: I'm engaged.
12: So happy for you, babe.
13: After all, कब तक घर पे अकेले बैठ के पॉन देखती रहोगी.
14: ओ दिन आर करो जेड़ा थानो प्यार का.